अनेक पढ़े बहुत समर्थ शास्त्र जी, कर करे अखट कर्म करंता। से भगत भले चन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तुझ जे वडे वर न कोई। तू जोग जोगे कोसदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई।

जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने।

करो। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानया हर राया। कहो नानक हम निज कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, कभियो बाच बेनती चौपाई।

प्रतपाराम। हमरे दुष्ट सबह तुम कावो, आप हांदे मोय बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबह करता राम। मोर अचानज कर दे करे, सब बैरन को वास संगरे, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक से के हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हां दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जो करे और अच्छा। राख लियो मैं रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजाज ने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

पाठ पाठ की जाने, जाबत करख करा करतारा, प्रजा तरत तब दे आपारा, जबया करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सब तार, आपे अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेदे रे आलम।

ताको कृपा हन अनुमानत, महामूढ़ कछपेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्त न पेव। आप अपने बुद्ध है जिति, बरणत पिन पिन तो तिति।

कहूं समट पयो शंकर कैठा, सगरे सिरट दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सेख्यो भार्य सेख संगरु, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे।

तत्काल कृपा दृष्ट तन जाय न हरि हो, ताके ताव तनक मोह हरि हो। रिद सिद्ध कर मो सब होई, दुष्ट साछ सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस देता है उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दार दुष्ट दुख तेरा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हां दे ले ओ बारी। सर्ब ठौर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते लियो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद ना समरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां संगणियां ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां, झंडे बुंगे जगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची, मादा रखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ देश दा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हिन माणियां दे माण। निताणियां दे ताण, निवटियां दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती चौधड़ी प्रार्थना है पातशाह जी, आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखदिआं, सोदा रहरा साहिब जी दी पावन बाणी दे जाप कीते गए समुची सेवा निभाउंदिआं, आप जी दे बच्चिआं पासों होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगांह तों समत बख्शिश करनी, समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी। कदम कदम लेखे विच लाउणा, आप जी दीआं बख्शियां दातां दे विच्चों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां। दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना, मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां, बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना, इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं आप जी दे हजूर समूह साध संगत जी वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी, कृपा करो पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा या की रहना, ख्वार हुए सब मिलेंगे,
ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ग्रेता ठहरु नाहे, कबीर सोई मुख तन है, जा मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी।

परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के प्रतख दर्शन कर रहे हो ते गुरु चरणा च जुड़ बैठे हो, सतगुर कृपा करे आओ सारी संगत चुका के शीश बख्शो आग्या बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ढाडी जथे ने यह जो पेश किया इन तलंग का साका कहें, गाँवे बहुत ने पर इनू मोड़ देना पैंदा, तो मोड़ तुसी सरबण किया। असी दुआबे दे आ, असी इनू कहने तलंग दा साका, ते माझे दे कहिंदे ढाडी, इनू कहिंदे ने खड़ा साका, पर वह मोड़ नहीं दिंदे। मोड़ तकरीबन आपां दुआबे दे लोग दिंदे ने, ते मालवे दे गाउंदे ही नहीं। बहुत कुछ चंद क ढाडी जिथे पुराने गाउंदे सी, नवे ढाडी मालवे दे नहीं यह साका गाउंदे। सो गुरु खालसा जी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने यह ढाडी कला प्रफुल्लित किया, धार्मिक किया। यह नहीं भी ढाडी उन्हां तो पहला है ना सी, ढाडी बहुत सी, ढाडी उन्हां तो पहला बड़े गाउंदे सी, पर वह राजियां महाराजियां दी सिफतां करदे सी। छेवें पातशाह महाराज ने मासी के पुत जिन्हों मसेरे भरा कहिंदे, एक दूजे की मासी के पुत नथा ते अब्दुल, इन्हां दी गां अंश वंश मुश्का ते शमीली, मुश्की ते शमीला, जिन्हां ने पंगाणी का जंग अखां नाल वेखिया और फिर लिख के गाया ते दसवें पातशाह महाराज जी नूं उह बार बना के सुनाई। दसवें पातशाह महाराज ने बड़ा धन दे के उन्होंने नवाजिया, सत्कारिया और हजूरी बच रहन का हुक्म दिता महाराज जी ने मुश्की ते शमीले। सो आप इतिहास भी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का शुरू किया होया, हुण आप उत्थों इतिहास में शुरू करते हैं। काबल की धरती है जिथे छेवें पातशाह महाराज जी ने भाई गुरदास जी को घोड़े खरीदने वास्ते भेजा, घोड़े पसंद आ गए, एक लख रुपया उन्हों का मुल बनता दोनों घोड़िया का, पाँ पाँ हजार रुपया। और छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने हुक्मनामा लिख के भेज दिता वे भाई घोड़े साढ़े पसंद वा, इहदा मुल तार दिता जाए। भाई गुरदास जी की खुशी का कोई पारावार ना रहा, इन्ने खुश होए कि मैं खरीदे चुने ते छेवें पातशाह ते संगतां नूं पसंद आ गए। तुसीं कोई चीज लैके आउंदे हो गुरु जी दरबार चढ़ाउंदे हो, जे गुरु खुश हो जाए होर की चाहिए। भाई गुरदास जी ने समा कुछ सूरज छिपण किनारे सी, उन्हां सदागरां नूं बुला लिया, भाई अपनी माया लै जाओ। सुदागर आ गए, कुछ गाहे बगाहे कोई दुनियावी गल्लां होईयां, दुनियावी गल्लां करन तो बाद वो कहन लगे भाई साहब जी साडी माया दिओ ते जाइए। पहले तंबू च बैठे ने भाई साहब, भाई गुरदास जी दूजे तंबू च माया लैन गए जिथे माया रखी हुई है। माया की सी, दस पेटियां सोने दियां मोहरां दी सी, जिहड़ियां पंज खच्चरां दियां खुरजियां च लद के लियांदी सी। जदों अंदर माया लैन वास्ते गए ना भाई गुरदास जी, उन्होंने जिंदी खोली पेटी दी, जद उन्होंने माया वेखी माया नहीं निकली, की निकलिया को ठीकरियां निकलियां, गोल जड़ियां घड़ियां हुई ठीकरियां। जब दम सर्च करा गया भी आ की बनिया, दूजी पेटी खोली वह भी अलदी, वह भी ठीकरियां, हौली हौली करदिया करदिया दस दियां दसें पेटियां ढेरी कर लिया, चंगा ढेर लग गया। भाई गुरदास जी का सर्च करा गया तो पैरों भार जमीन ते बह गए, ये की बने असलामी मुल्क वा।
ਕਾਬਲ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਵੀ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਉੱਚਾ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣਗੇ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਸਭ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਇੱਕਦਮ ਸਰਚ ਕਰਾਇਆ, ਅਕਲ ਦੌੜੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਤੰਬੂ ਪਾੜਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਦ ਚੰਗਾ ਚੌਖਾ ਟਾਈਮ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੰਬੂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਮਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਪਤਾਰੇ, ਗਾਈ ਲਾਲ ਨਿਗਲਿਆ ਪੇਟ ਪਾੜ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਵਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਿਦਕ ਹਾਰ ਗਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਉਂ ਕਲਮ

पंच दुख अर अहं रोग, एह तन ते सगल दूर की ना रहाओ। बंधन तोर शोर बिखियाते, गुर को शब्द में रहिय रह दीना। रूप अन रूप मोरो कश ना बिचारियो, प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीना। पेखियो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हर खे पती ना। तिस ही को ग्रे सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीना। पेखियो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हर खे पती ना। तेस ही को ग्रे सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तेस ही को तीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, वडभागे हां जिथे आप जीआं ने। गुरु दर दे सवारियां पासों इतिहास सरवण कीता है। सरबत दे भले दी अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग दी दात बख्शिश कीती है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण कीते हन। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूपां दी सेवा संभाल सोहिला साहिब पावन बाणी दे पाठ होणगे। समाप्ति तो उपरंत आप संगतां ने कड़ा प्रसाद दी देख लै के गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाण दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिला राग कौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावो सोहिला सिवरियो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला, हूँ वारिजित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार, दरदाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन शुमार। संमत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सजने आसी सड़िया ज्यों होवे साहब सिउ मेल। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵਨ। ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕੋ ਵੇਸੈ ਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰੱਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਵਿਸੋਏ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ, ਮਾਂ ਹੋਵਾ ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੋਤੇ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल राव चंदी पिक बने तारका। मंडल जनक मोती तू माल्यान, लो पवन चवरो करे सकल बंदराए। फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नान नैन है तोय को, सहस मूरत ननायक तोई। सहस पद विमल नानेक पद, गंध बिन सहस तव गंध। इउं चलत मोही समय जोत जोत है सोए, तिसदे चानन समय चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद, लोभित मनोवन दिनों मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बो परया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जानिया, तिन अंतर होमे कंडा है। ज्यों ज्यों चलें चुबै दुख पावें, जमकाल सहें सर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बोशो बखंड ब्रह्मंडा हे।
ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਾ ਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਯਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਰਹਾਇਆ ਕੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਆਉਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਰਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸਹਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਹਰ ਨੋਹੇ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਤੁਧਿਆ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।

सब किलव काट है एक पलका। हर हर दयाल हुए जिस ऊपर, सो गुरमुख हर जप जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म

जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई भावन दी जन का जयकार कराई।

नाम रहे लिव लाई, नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाई। सतगुर मिले नाम उपजे तिसना भुख सब जाय। नानक नाम रतिया नामो पल्लै पाए महला चौथा। सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया। उस पिछे वजे फकड़ी मोह काला आगे भया। उस अरल बरल मोह निकले नित झगू सुटदा मुआ। क्या होवे किसे ही दे कीते जां थुर किरत उसदा एहो जिया पया। जिथे ओ जाए तिथे ओ झूठा कूड़ बोले किसे न भावे। वेखो भाई वड्याई हर

गत पाई, कह उपदेश कबीरा जब जरिए तब होए पसम तन, रह किरमंदल खाई काची गागर निरपरत है, यह तन के है बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता सोधन कैसे भूलिया रहाओ, ज्यो मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर थन किया, मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन को दिया, देहोरी लोबरी नार संग भई आगे सजन सोहेला, मरकट लो संग लोग कुटांब भयो आगे हंस अकेला, कह

गल कहन न जाई, हमरा भरम गया वो भागा, जब राम नाम चित लागा रहाऊ, बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग संगेला, अपने रंग रवे अकेला, कथनी कह कह भरम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जाको गुरमुख आ बुझाई, ता कह हृदय रहा समाई, गुर किंचित किर

सतिया मन संतोख उपजय। देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा ते कूड़ियारा खराबा बेकार। एक हुंदा खाए

साहिब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुरु मिलिए।

खाक जे मिले तो मस्त गलाये, कूड़ा लालच छड़िए, कूड़ा लालच छड़िए, होई इक मन अलख ते।

अनेक विधि समझावो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो।

जुगो जुग अटल, चबर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहित अमृत के।

सत्संगत सु मिल भयाए हर नाम समाए राम गुर कै सब सारे जीवन मुक्त पै हर के नाम लेव लाए राम हर नाम जित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत हर नाले सुदाता पाया मोह चुकाया अंगर नाम समालय गुर सब दे राता सहजे माता रे नानक मन वसाए नानक तन कर सद ही सोला जे सतगुरु सेव समाए गुर सतगुरु जग भरम भुलाया हर का माल न पाया राम गुरमुख एक मेल मिलाया तनके दू गवाया राम तनके दू गवाया जा हर मन पाया सदा गावे रंग राते हर के पग सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची पगत करे दर जापे घर दर सोभा सचा सोई नानक सचा सोला सची सच बाणी सच दे ही सुख होई।

हा जियो मरण जाहे हिकिड़ो कई सह सुभाए साधन कंत प्यारे साच साजू सदा है नर्म कई सह श्रंगारी मेरा प्रभु साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया नानक सदा पैरा भी अपना जन गुरचरनी च दलाया पर पाई आला बालड़ी आंगण सहजे माते राम गुरमते मन आनंद पया तत मन मेल न राते राम तत तन मेल न राते हर प्रभ राते मेरा प्रभ मेल मिलाए आनंद राते हर प्रभ अपना बिच्छू आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राते नानक नाम मिले वड्याई प्रभ रावे रंग राते फिर रावे रंग रातड़ी आई बिरका मेल न पाया राम सो सो अंदर मलदाता जिन बिच्छू आप गवाया राम नीचो मोह चुकाया जहां पाया जा हर कावन पानी अंदर गुण गावे न सच कथे अकथ कहानी जो चारे

हल्ला चौथा हर पलड़ी लाभ परवृत्ति कर्म धरा बदनाम जियो वाणी ब्रह्मा वे धर्म ग्रहो पाप जाय बदनाम जियो धर्म ग्रह हर नाम ते आवो सिमरत नाम दृढ़ाया सदगुरु गुर पूरा आराधो सब कलव पाप गवाया सहज आनंद हुआ वडभागी मन हर हर मीठा लाया जन का।

हाथी लीला मन चाओ पया बैरागिया बैराम जियो समझना हर मेर हर पाया वडभागिया बैराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर दिन उपजी हर जबे मदग भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौपतरी लाभ मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरम मिलया सुबाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रपाया आंगन हर लिव लाई मन चिंदिया बल पाया स्वामी हर आए नाम जी बधाई हर बठा

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सुही संत महला चौथा कार दूजा। गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन सरसाए, रसन साए मेरी प्रपाए, मिलया सह सुबाए, अन्न भोग भोग सुख सुवाए, शब्द रे लिवलाए, वडे भाग गुरपुरा पाए, अंदर नाम ते आए, सहज सहज मिलया जग जीवन आए, नानक सुन समाए, संग तवे संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जन नाई मैल गवाए, भई पवित्र शरीरा, दुर्मल मैल गई परम पागा, होमे बैठी पीड़ा, नदर प्रभु सत्संग पाए, निज कर होया वासा, हर मंगल रसन साए, नानक नाम प्रगासाए, अंतर रतन विचार गुरमुख नाम प्यार, ना प्यारी साधन तार, अज्ञान अधीर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया खड़ चान, घर मंदिर सोहाया, मंद अर्प सिंगार बनाए, हर प्रसाद जी पाया, शुभ कही सोई प्रभु की जय, नानक अंक समाया, हर काज रचाया, गुरु व्याहने आया, व्याहने आया गुरु हर पाया, सातन कंत प्यारी, संज नामिल मंगल गाया, गाए हजू आप सवारी, सोनल गंग दरबार मिले आए, अपूर्व जन बनाए, नानक प्रभु पाया सु साचा, ना कदी मरी ना जाई, राग सुही संत महला चौथा घर तीजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आवो संतना गुण गावाए, गोविंद केरी राम, गुरमुख मेरे ये कर वजे कने वदे सकने रे राम, साधक ने हर तेरा तू करता सब ताई, ऐन जपी सदा सलाई, सब शब्द ले बलाई, आनड सज रंग राताई, राम नाम रत पूजा, नानक गुरम एक बचाने, अवन दास जाने दूजा, सब मै रव रिया सुप्रभ अंदर जाने राम, गुर शब्द रवे रव रिया सुप्रभ मेरा स्वामी राम, मेरा स्वामी अंदर जामी, कल कर व्यासोई, गुरमत सज पाइये सहज समाइये, तबन अवर न कोई, सहजे गुण गावा जी प्रपावाए, आपे लय मलाए, नानक सुप्रभ सब दे जापे, अंदर नाम त्याए, ओ जगो उत्तर मन मुख पार न पाई राम, अंतरे होमे ममता काम क्रो चतुराई राम, अंतर चतुराई ताई न पाई, बरता जन्म गवाया, जमग दुख पावी चूटा खावे, अंत गया पुजताया, मेरे नामे को बिली नाई, पुत कुटुंब सोत भाई, नानक माया मूह पसारा, आगे साथ ना जाई, हो पूछो अपना सतगुरु दाता, किन बद दरिये राम, सतगुर पै चलो जीवत्या मरिये राम, जीवत्या मरिया पौज दरिये, गुरमु नाम सुमाने, पूर्क पुरख पया बड़ पग, सच नाम लिवलावै, मत प्रकाश मही मन मन, राम नाम वडियाई, नानक प्रपाई शब्द मिलाया, ज्योति जोत मिलाई, सूही महला चौथा घर पंजवाई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौर संत नाम रू प्यारा, मैं मिलया मेरी दसना, बुझ गई आस हो मन तन देवा, सतगुरु मैं मिले प्रभु गुणतास, तन तन गुरु वाडो पुरख है, मैं दसे हर सबस, रपागी हर पाया जन नानक नाम वगास, गुर सज्जन प्यारा मैं मिलया, हर मार्ग पंथ साहा, आवो चिरी विछुनिया, मिल सतगुरु प्रभ नहाय, होद बाजो करी उड़ीणिया, ज्यो जल बैन मीन मराहाय, बड़पागी हर त्याया जन नानक नाम उस महाय, मन दस चल चल परम मन परम पलाया, आसा मन चत वे मन दसना पोक गवाया, अंतर तंतर दबिया फिर भालन गाया, जन नानक नाम सलाए, तू मेरे नाम ही पचपन मोया, गौर सुंदर मोहन पाए, करे हर प्रेम बाणी मन मारिया, मेरे हृदय शुद्ध बुद्ध विसर गई, मन आसा चत विसारिया, मैं अंतर वेद में प्रेम की गो देखन मन सुधारिया,
ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮੈਂ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ ਆਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਵੇ ਜਨ ਹੋਮੇ ਦੇਖ ਜਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਖ ਵੇ ਬੰਨੀਆਂ ਇਨ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਵਗੁੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕਾਲ ਖਾਏ ਇਨ ਮਨਮਕ ਮੂੜ ਸੁਜੁੱਤਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਗੁਰਸਬਦੀ ਹੋਮੇ ਛੁੱਟਿਆ ਬਸ ਆਵੋ ਵੇ ਜਨ ਇਸ ਮਨ ਕਹੋ ਮਨ ਬਾਸੇ ਚਿਰ ਨਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰਿੰਦੇ ਆਏ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਂਝਣ ਮਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਉ ਮਤੀ ਛੱਡ ਆਸਾ ਨਿਤ ਸੁੱਖ ਸੌਦੇ ਆਏ ਸਾਧਨ ਆਸਾ ਚਤ ਕਰਾਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਏ ਹਉ ਸਿਜੜੇ ਆਈ ਰਾਈ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਉ ਮਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਏ ਹਰ ਸਰਦਾ ਸੇ ਜਿਵਿਛਾਈ

राग सोही संत महला पंजमा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन बावरे तू काए देख बोला ना, सुन बावरे ने कूड़ा लायो कुछ।

राम राम मिलिया कोई न साके पैन कार बाल राम जी आए बेख पेखे बेख सुनिए बेख नदरी आया जल तल मई अलपू न स्वामी घर घर सुमाया जय देव जात समय सुमाया कहीं तक न जाए जज कहे चलत नहीं जाए लखन नानक ते आए राग सुही संत महला पंजमा कार दूजा को अंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लाग हर अंग अंदर जाग हर अंग जागे पापा गए मिले संत प्यारे आए कोई चल लागे परम पागे कार सर सवार।

जन परम परदा खुला राम, मिटिया तेरे तजे बकार ठाकर सो मन मान, प्रभ जी पाढ़ी पही निकाणी सबल जन्म परवाना, पही अमोली पारा तोली मोत जोत सुख दर खोला, कहो नानक हो नर पहु सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजमा साजम पुरख सतगुरु मेरा, पूरा तज बनावर ना जाना राम, माँ पिता

मोहन गुण बीतू सुख सागर सा संगत मन जागा कौना प्रभु कृपा कीनी चरण कौन मन लागाए सूही महला पंजराए हर जपे हर मंदिर साजाए संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना सगले पात जावे राम हर गुण गावे प्रमुद पाए प्रभु की उत बाणी सहकता प्रभु की मन मीठी कथी अकथ कहानी पलास जोग मूर्त पल साचाए अवचल नी बरखाई जय नानक प्रभु पवे दयालाए सर्व कला बने आई आनंदाए वजे नित वाजे पारम वन बूठा राम गुर मुख से करनी सारी बैंसे भरम पर झूठा राम अनहद बाणी गुरमुखानी जैसों सुन सुन मन हरिया सर्व सुखादशी बने आए जो प्रभु अपना कर आए कर मैं न पाई परि भंडारा राम नाम रंग लागाए नानक जन प्रभु कदे न विछड़े पूर्ण जा के भागाए।

सहज सुभाई पै कृपाला गुण अवगुण ना विचारा कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उतारिया। मान मोह मद मंसा गल व्यापी कर कृपा अब नवार है को नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारा। गुण गोपाल का गुण सक।

काय, नाम जब तसुख पाया राम, मन छे सही फल पाए, कातिया बसाया राम, कातिया बसाया सब सुख पाया, ये पद पाए सुख बैगासे, उनका भी पूर्ण परमेश्वर है, कार्य आया रासाय, आप स्वामी आप ही रखा है, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन उथान सुहाया, कर मंगल हटनाले सोहे, ये नाम श्री राम, संत भक्त हरना आराध्य, कटिए जम की पासी राम, कटिए जम की पासी अविनाशी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण हुई, मन इच्छे फल पाए, संसार में सुख माने रलिया, दुख दर्द परमनासी, सर्व समग्री पूर्ण हो, मन इच्छे फल पाए, संसार में सुख भय माने रलिया, दुख दर्द परमनासी, स्वर्ण वाले सगो पूरे, नानक पर जाई, दाद खसम की पूरी हुई, नत न चढ़ सुवाई राम, पार ब्रह्म खुश मानना की यद की बड़ी बढ़ियाई राम, आदो जुगा दे भगत कारा का सुबर पया दे अल्लाह जी जन सब सुखी वसाई आप कवि पत पालाई दर्द जो पूरे आप स्वामी की दकह न जाई कौन ना सब बलियारी जन अवचर नी वरखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर कथा नत सुनिए राम अनहद चोज भगत नित पव पंगण बाजे सुनिए राम अनहद चुनकारी तत विचार संत गुर नित हुआ हार नाम अराधे में सब काट है कल सगले खूब है त जन्म मरण आपने जान है बोड़ो पाइये जो नहीं है नान गुर परमेश्वर पाया जब साध इच्छे पुण्य आए सूही महला पंजवाए संता के कार्य आप खलोया हर काम करावन आया राम तब सुहाई तब सुहाव अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया समूर्त पाई जय जयकार भज गई अंतर लाथे सगल वसूरा पूर्ण पुरख अचुत अविनाश जय वेद पुराने गाया अपना बल रखा परमेश्वर नाम।

नान गुण गावे स्वामी कहे आचार्य जिस वड्याई राम जिसका काज तिन्हें किया मानस गया बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदाज करे जयकारा राम गुण गावे गोविंद आनंद उपजाय सत्संग सत बने आई जनऊ उपदय उद्यम किया ताल के रात की उपमा क्या गणी आठ तीर्थ तीर्थ पुण्य क्रिया महानिर्मय चारा पद पावन बिर स्वामी नान सदब आधारा गुण दान मेरा प्रभु करता उतर

गुणगोपाल उच रसना सदा का ये अंधन रीत लागी नाम से मंत्रण अमृत तीजे फिर मंत्र नानक एच पुन्नी पेक दर्शन जी जय राग सुई महला पंजमा शांति को अंकार सतगुरु प्रसाद मैठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा हो समर्थ की जी ओ कदन बोले कौरा कौड़ा बोल जाने पूर्ण भगवान है अवन को ना चितारे पर बदे सदाए एक तलनाई पन्ना कल कड़कड़ वासी सरन वासी नेरी ही तू नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हो बिष्णु पाई जी हर दर्शन देख अदारा अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हो चरण कमल भगत सारा पेगा जी आ ठंडा थी वा जेवड़ अवरण कोई आर अंत प्रभ्रे जल मैया सोई चरण कमल जब सागर तरह भौज उतरे पारा है नानक सरन पूर्ण परमेश्वर तेरा अंतर पारा वारा हो निमख न छो जी हर प्रीतम प्राण अतारो गुर सतगुर कह जी साचा आव अगम विचारो मैं साधु दीना था मलिना जन्म दुख नाटे सहज सुख अनंत गनेर हो मैं बैंठी गाटे

अनचल सो कर पाया, साव अवगर डिठे जी चरण कमल चित लाए, अविनाशी उतर के दासी मरण आवे जाए, धर्म अर्थ काम संपूर्ण मैं चिंदी इच्छ फल पाए, सत असमर्थ गुण गावे करते सुसाधक मन जन त्याया, नानक सन कृपा ने स्वामी बड़े भागी हर गाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सुही की, सलोका नाल महला तीजा, सलोक महला तीजा, सुहे वे सुहागनी पर राम ने जाए, पैर छोड़या कर अपने मोहि दूजे पाए, मिठा करके खाया बहु साधु वध्या रोग, सत पतार हर छोड़या फिर लागा जाए वजोग, गुरमुख हो वे सो पलटया हर राते सा शिंगार, सह सिर पर रावे हर नामा अवतार, आग्ञा करी सा सुहागण आ मिली करतार, नानक फिर पाया हर सचा सादा सुहागण नार, महला तीजा सूई नुमानी आए सो सु सास माल, नानक जन सवार अपना कुल्फी छुट्टई नाल, पौड़ी आप ही तक चाहे आकाश बतालाए, हुक्मी साजी ता साजिया नए तर सच्ची धर्मशालाए, आप पाए खो पाए दा सचे दी दयालाए, सबना सुमाए दा ते

बस कितना जी हा तोरले कहे पयन से कर्म एक मिता श्लोक महला तीजा सदिया हुई ना आखिया जे मरिया लागे जे लाजलान नान सतिया जानिया जे बेहे चोट मरा न महला तीजा पी सो रतिया जानिया ना श्री संतोख हन सेवन साई अपना नत उठ संभालन महला तीजा कंता नाल महलिया सही अंग जले हन से जले पर अपना तन मन दुख सहाय आए नान कंतरा जाने से क्यों अग जले हाय पावे जी हो के मरो दूर पी पा जाए पौड़ी तो दुख सुख नाल उपाया ले करते लिखया नावे जे उठो दात नई तो रूप ना लिखया नाम अखोर अंधा है गुरमन वास विचार कर कृपा नाम देसी पर लेखा ना लिखया सेवक पाए से जन्म ले जिन हर जप जपया श्लोक महला तीजा जिन्हें चले जा।

पौड़ी करते कान जनकिया सो जाने सोई आपे सहटो पाई अना आपे फन गोई जुग चारे सब भव थके कन कीमत होई सागरो के एक विखालिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सदा ये करता करे सुख होई। श्लोक महला दूजा जिन्ना पहो तिना नाहे पहो मचो पहो नवाहे नानक पतन राय तब दीवान गई है महला दूजा। तुरदे को तुरदा मिले उड़दे को उड़ता जीवत को जीवत मिले मुए को मुआ नानक सो सलाई जन कारण की आए पौड़ी सजते आए न से सचे गुण साधे।

पौड़ी हसलाई सदा सदा तन मन सब शरीर गि सज पाया सज गैर गदीर मतन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म का दो गया फिर पवे ना फिर नानक नाम सुलाए तू हर गुणी गहीर श्लोक महला पहलाए नानक ओ तन जाल जना जिरे नाम सारे आए पौधे जाए पर

चोर से चोरा चोर पौड़ी, आपे हुक्म चलाए दास सल्तन दे लाया, या पे आप लाए नौकर के।

गुरम कलो मलाई जन पावे नाम हर आंदड़ सवाए बजाए ज्योति ज्योत तार हृदय अर्गुण गाए जय जय शब्द हरे हर सब जग वरते आप हर स्थिति प्रीत कर श्लोक महला पहला जीना पाया प्रेम रस कंत न पायो साओ सुनजे करकाई पौना ज्यो आया त्यो जाऊ महला पहला सौ अलामे दिने का राती मिल हंसो सौ सलाम।

ना बैन बैन सब दुश्मन हेत पौड़ी गाड़ी गुण गावी न थई जन सवारिया गुरमुख से सच सलाई सच्चा उतारिया सच कर पाए मैल नाम प्यारा गुरमुख पाया नाम हो गुर को वारिया तू आप सवार आप सहजन हारिया शलोक महला पहला दीवा बल अंधेरा जाए वेद पार्वता प्रकाए उगे सू न जापे चंद जय ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंता वेद पार संसार के कार परवर करे विचार बिन पूजे सब हुए कवार नानक गुरमुख तिस पार महला पहला सब दे साधन आयो नान लगो प्यार रसना फिका बोलना नतनु ही कवार नानक पया करत कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी जे प्रभु सलाहे अपना सो शोभा पाई होमे विचो दूर कर सच मन वसाई सचबाणी गुण उचरे सचा सुख पाए मैल पया चिरी विशुनिया गुर पुरख मलाए।

नानक तिना बसंत जिन कर बसिया कंत, जिन का एकांत दिशापुरी, से एनस फिर जिलंत पौड़ी, आपे बख्शे दया कर को सतगुरु बचनी, आंगन सेवा गुण रवाय मैं सच्चे रचनी, मेरा अपना मेरा बेंत है अंत किरणा लखनी, सतगुरु चरनी लग गया हर नाम जपनी, सोचे सोल पाई सी सब करे बच जचनी, श्लोक महला पहला है पहल बसंत आग मन पहला मलियो सोए, जद मिले सब मोलिया तहे न मोलिया कोई, महला पहला है पहल बसंत आग मन तिका करो इस विचार, नान सोई सलाए जे ससे दे आधार, महला दूजा मिलया मिलया ना मिलाए, मिलया मिलया ना हो जे हुए, अंतर आद में जो मिलाए मिलया कहिए सोई पौड़ी, हर नाम सलाए सच कार कमाए, दूजी काए लग्या फिर जो नहीं पाए, नाम रत्या ना पाई नामे गुण गाए, गुण कई सब जलाए हर नाम सुमावै, सतगुरु सेवा सबल है सेव्या फल पावै, श्लोक महला दूजाए किसी कोई कोई माजन माणी, एक तू क्यों अमरी जे रोए, जा लग जितन आवही महला दूजाए, जा सुखता सोरावियो दुख भी संभालियो, ना कही सियाण कंत मिलावा हुई पौड़ी, ओ हो क्या सलाही किरम का जत, वड़ी तेरी वड़ी आई, तू अगम दयाल अगम है आव लो मलाई, मैं तुझ बने बेली को नहीं अंत सिखाई, जो तेरी शरणागति तै लो छड़ाई, नान करे परवाह तल कह तल नाय तुम आई, राग सुही बाणी श्री कबीर जियो, तथा सबना भगतां की कबीर के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवतार आए, कहां तुम कीना आए, राम को नाम कबू लीना, राम ना जपो कमन मत लागो, मर जाए।

आज पता राय कांग उड़ावते पूजा परानी क्या कबीर एकता सरानी सुई कबीर जी अमर सरानो लेखा देना आए कठन दूत जाम लेना क्या देखटिया क्या गवाया चलो सताब दवान बुलाया चौदह दिन दिलहा।

जी नहीं, मैं किसी की बोई ऐसा दिन दिखा लाए, हर के लोगा मो नीत डसे पटवारी उपर।

रहाउ। भाई बांध कुठां बिथे राय ओपे लागे काड सवे राय कर की नार उदरे तन लागी ओ तो पूत पूत कर पागी कह रवदास दे जग लूटया हम तो एक राम कह छूटया एक ओंकार सतगुर प्रसाद है राग सुई बाणी शेख फरीद जी की तद लो लो लो हाथ मरो रवि बाल हो सो सो लो राव तैसे मन किया किया रो सही अबाण से नई दोसाई तय साहब की मैं सा न जानी जो न खोए से पाछे बैतानी रहाऊ काली कोल तू कित को गुण काली अपने वीर के हो बिरहो जाली।

तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रो रिजाई रहाओ। जो कुछ हुआ सब कुछ तेरी सब सुनाई, तेरा अंत जाने मेरे सहबा, मैं अंदरे क्या चित्राई। क्या हो कथी कथे का देखा, मैं कथना कथना जाई। जो तुझ पावे सोई आखा, तल तेरी वड़ियाई। इत कुकर हो बगन आई, पौगा संताई। पगधी नानक जे होएगा, ता कसमे ना ना जाई। बेलावल हुई महला पहला, मन मंदिर तन वेश कलंदर, कड़े तीर्थ नावा। एक शब्द मेरे प्राण।

ऐसा नाम हो जाज के तू आलक रहू माया मूत्र कट्टी नारू पूंडी कौन कामने यार राज रूप झूठा चार ना मिले चण अदियार चाके छुडी सच नहीं कोई बात से विचार न हुई एको को नहीं पाओ कोई करता करे करा सोई।

गोर बजरी मान हुए सहते आते अन्य हर के रंग रहता मन मान है मन परम बोले बोरा ने हर में क्या हो रही है गुरु साहब दे पहचानना है बिंदा सिंह कैसे जीव मेरी माई हर में जी अरा रह न सका है कह न सागुर बूझ बुझाई रहा मेरा प्राण विसरे हो मरुद खाली सास ग्रास जपो अपने हर पाली सदा बिरंग हर नाम सह निहाली अजाने गुरु हर नाली आ कथ कथा कहिए गुरु पाए प्रभु आगमा को दिए दिखाए मैं गुरु क्या करकार कमावे हो मेट चले गुरु सद सुमाए मन मग विछले टूटी रास गुरु मुना मिले सुबास हर कृपा तारी दास दास जन नानक हर नाम तन रास बेलावल माला तीजा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिक त्रिक खाया त्रिक सोया त्रिक कपड़ अंग चढ़ाया त्रिक शरीर कुटुंब सहित सोचत हुण खसम पाया ओड़ी छुटकी फिर आथने आवे अला जन्म गवाया दूजा पाओ ना दे लागण जिन हर के ना चन सारा जग जीवन।

मुक्त बंध सत ते हुवै ऐसा आक बखाणै गुरम हुवै सो मुक्त कहियै मन मंद विचारे जुन मुक्त एक लागी सदा रहे हटना लै तनकी रहन गत कही न जाए सच आप सवार परम बुलाने से मन को कहियै न उर्वार न पारे जुन नद करी सोई जा न पाए गुर का शब्द समलै हजर मन मन तार नानक पाव मस्तक मारिस बतार बलावल महला तीजा तल क्यों तुलया जाए दूजा हो सूजी पाए तिने दूजा नहीं कोई तद की तकू होए गुरप्रसाद वसी मने आए।

माया काल सत के खोई ते कोई मैले नर में खोई जस लाई सुला के आई जस सत सारे साथ दिखाई आपे ले ताते आपे लाए आप जाई आपे जापे आपे सगे साथ आपे नानक आप सुनाई आपे बिलावल हुई महला जाए सैर ते सेवक सेवा सेवाए करे सेवा बहन्ना आपे ते आखिर बहन्ना समय एक सुमन्ना सदगुरु प्रति हर नाम सुमन्ना जैसे कर्म हुई सो सदगुरु भाई अंदर लागे सहज तया न रहो क्या कोई तेरी सेवा करे क्या कोई करे अभिमाना जब अपनी जो खिजे तू स्वामी तब कोई करो तो क्या बखियाना आपे गुरु चलाए आपे आपे गुण निदाना आपे आप चलाए ते वह कोई चले ते

राम नाम रसनाय मादक लेख लिखे गुरु पाया हर हृदय नाम बसनाय रहाउ माया जस तो प्रभ है प्राण राग लि उमर जपना जम प्रसाद हरना हरना रसनाय कमल कमल गत मत पाइये हर की पद पवनाय ओटू भय डोर हर जमरी हर हर चोर रसनाय प्र दीन दयाल भक्ति अवतार नय पापी हार हे रघना हर दासन हो दास दास हम कहिए जन नानक दास दसन्नाय बलावल हो महला चौताय हम मूर्ख नाग मति शरणागत पर अजन्मा कर कृपा राख लो मेरे ठाकर हम पात्र हीन अकर्माय मेरे मन पाज हे राम नम हे रामाय गुरमत हर सिपाहिये होर त्यागो निपल कमाय रहाउ हर से कुछ अवतार हर निर्गुण हर उपाय तुझ बैन अब न कोई मेरे ठाकर हर जबे वडे करमाय नाम हीन दुर्ग जीवता तन वड दुख समाय ओ फिर वह जोर बवाई आये मद पागी मूड अकर्माय हर जानो राम नाम अदार है तोर पूर्व लिखे वड करमाय गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सबल जन्माय बिलावल महला चलताय हमरा जत लोग तो मोह बिखिया है बर मैल परे पराय तुमरी सेव करना न सके हम क्यों कर मुग्ध तराय मेरे मन जब नर हर नाम नर हराय जन ऊपर कृपा अवतारी मैं सब कृपा रे परा रहाउ हमरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी हर देव मति जद कराय तुमरे संग लगे से उदराय जो संग काट लो तराय सात नाल हुसी मद ओ मदमा जिन हर सेव न करा तीन पाग ही दो चारी ओ जन्म फिर मराय जिनको तुम हर मेलो स्वामी तीन संतो गुर सराय दुर्मत मैल गई अरे पजाय जिन नानक पार पराय बलावल महला चौताय आवो संत मिलो मेरे भाई मेरे हर हर कथा करो हर नामूत है कल जुग खेट सतगुर तरो मेरे मन हर गुर हर गुर उचरो मद लिखत लिखे गुण गाए मेल सतगुर पार परो रहाओ कया नगर मैं राम रस उत्तम को पय उपदे जन करो सबसे सब हर दर्शन अमृत हर रस पीब हर नाम अमृत हर मीठा हर सद सद गुर सद चाख सिख गुरमुख हर मीठा लागा सब बेख रस राम नाम रस राम रसायन असे वो संत जनो।

हालू गुरमुख माओ गुरमुख बने रहाओ, अनको बाप जद बहुते सुहोवे से बात हो बने, अपना पल सब कोई बाच सो करे सो मेरे जितना चतनी, मन की मत

राम हो नद गाये हा दुख बिसारण हो राव। हर किया सब लय जन्म हमारा हर जप्याय हर दुख बिसारण हाराय। गुर बैठे है मोह दोय दारा हर कोई हमारी सब दाता मेरे संगति गुण गावण हो। मानो राम नाम कर आसा पाऊ दूजा बिन से बिनासा। विच आसा हुए निवास निरासी जो जान मिल आई हर अवना पासी। हा कोई राम नाम गुण गावनो जब नानक तिस पग लावनो। राग बिलावल महला पंजमा चौपदी।

हर के बस दातन से हसुते रहे नजारा ऊपर आप गुरु रखवाराय पाया वेड़ माया सर्व प्रियंगा हम पचे दीपक देख पतंगा शिकार शिकार सर शिकार करे नहीं पावे जा हो कृपाल था गुरु मलावे हो फिर उदासी मैं पैर चरण दिसाया नरमूल के हीरा मिले ना उपाय हर का मार्ग तस्में लाल है गौर।

विनला की जब अलग पे भाई तद पे हित पाई कुण गाई दस के हर नाम ते आई रहाऊ सबनी थाई रवे आप आज गाद का बड़ प्रताप कृप साधना हुई संताप गुर के चल लगे मन मीटे निर्भण निर्विघ्न हुई सब थाई बूटे सब सुख पाई सब टूटे पार ब्रह्म प्रभाई रखवाल जिथे किते दी से ना लई नाग दास खसम प्रतपाल मिलावल महला पंजमाए सुख निदान प्रीतम पामी राय अगणत गुण ठाकुर पामी राय मोहनाथ मृगी शरणाय।

चंदन काट मुगद गुर पीनाए, दुख सुख करत जन्म फुन बुआ, जनय चरण कमल गुर आश्रम दियाए। अगन सागर बूढ़ संसाराए, नानक बार पगड़ सतगुरु ने ताराए। बिलावल महला पंजमाए, मंतन तन अर्पो सब अपनाए, कौन सु मत चित हर जद जपनाए। कर आस आयु प्रभु मांगण आए, तुम पेत सुबा मेरे आगन रहाओ। अगन जोगत करे बहुत बेचारो, सासंग ऐसे मने उदार। मतबुद सुरत नाई उदराई, तमिल जाल मिलाई। नैन संदूख प्रभु दर्शन पाया, कौन सबल सुहाया। बिलावल महला पंजमाए, मात पिता सुत साधन माया। सासंग सब दुख मिटाया,

कोट जदों सदो गुण पाया है, मन दा बताना हर गुण गाया है, देह भगत आए प्रभु अंतर जामे, नानक ई बेनती स्वामी बिलावल होइ महला पंजवा। गुरपुरा वडभागी भाई आए, मिल सतगुर नाम ते आई आए, परम प्रभु तेरी शरण आए, कलव काटे भजे गुर कै चरण आए। राओ अवर कर्म सोलो काचार, मैं साधु संग हुए उदार, सिमरत साधु वेद विचार, आए जपे नाम जत पार उतार, आए जय नाम को प्रभु कृपा की करिया, आए साधु धूर मिले न दरिया, बलावल हुई महला पंजवाए। गुरका सद दे मैं जीना, सगल मोर पूर्णा सीना, संजना का मूर्ख मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध गु कर गए लीना, जय जय का जगत पर टीना, नीचे ते ऊंच ऊंच परवीना, अमृत नाम मार लीना, मन का निर्मल पाप जल जी पिखीना, कहो नानक प्रभु पाए परसीना, बिलावल हुई महला पंजमाए। सगल मनोरथ पाए मीता, चरण कमल सो लाए चीता, हो बलियारी जो प्रभु ते आवो, जल बुझे हर हर हर गुण गावो। रहाओ सगल जन्म होत वड पागे, सासंग राम मिल विलागी, पत मत तन सुख सहंदाए, एक निमख ना विसरो परमानंदाए। हर दर्शन की

हारे नाम जोताए नर जी राय, मारखवार सात नर थी राय, राम नाम हुआ रखवाराय, चाकरे मारे सात विचाराय। निंदा

ऐसी कृपा करो मेरे मेरे, हर नानक बिसरो ना काहू बेराए, बलावल महल्ला बजमाए, चरण करो प्रमेर दे आए, रो गए सगले सुख पाए, गोरो दुख काटा दीन दान, सर्जन जी प्रमाण रहाओ, अकथकता अमृत प्रभानी को ना जीवे ज्ञानी, बलावल महल्ला पंचमाए, शांत पाए गुरु सत गुरु पूराए, सुख जय भाजी तुराए रहाओ, ताप आप संताप बनासे, हस मत किल विकसव नासाए, अंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मिल पैज सुवारी, बलावल महल्ला पंचमाए, ममता मोहत मत माताए, बंधन बाजाए, अंत बिकराल छन छंद बिकार कर हो फाती माया मंदम के बाजाल, तेरी सन प्रभु दीन दयालाए, मां बिखो सागर अंत पारी, उधर साधु संग रवालाए रहाओ, प्रभु सुखदाते समझा स्वामी जी अपन सब तुम राय माल, परम के बंद काटो परमेश्वर नानक प्रभु सदा कृपाल, बिलावल महला पंजवाए, सगल नंद किया परमेश्वर अपना बिरद सुमारिया, ये साजना के कृपालाए, बिनसे सगल सवार आए, कार्य सतगुरु आप सवार आए, वडी वड्याई हर गोबिंद की, सुख मंगल ज्ञान विचार आए रहाओ, वर्तन तिर बड़े हरिया होए, सगले जिया धारिया, मन छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारे आए, बलावल माला पंजवाए, जिस ऊपर हुवत दयाल, हर सिमरत काटे सो काल रहाओ, साध संग भजिए गोपाल, गुण गा टूटे जमका जाल, आपे तो गए आपे पर दपाल, नानक जाचे साध रवाल, बलावल माला पंजमाए, मन में सचो हर ना हर नाम, आनन कीर्तन हर गुण गाम, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर पर जानो निराई रहाओ, कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चानी ता कमल लाग, बलावल महला पंजवाए, रोग गया प्रभु आप गवाया, नींद पाई सुख सहज कर पाया रहाओ, राज राज भोजन खाओ मेरे भाई, अमृत नारद माई सत्याई, नानक गुरपुरे सुनाई, जन अपने ना की पैज रकाई, बिलावल महला पंजमाए, सगर कर दीने अंदने कर बार रहाओ, जो जो नंद करे नानक ग्रहण की, आगे की मारे करतार, नानक दाता की सुनाई, जाके अखंड अपार, बिलावल।

गोपाल सुन सुन नानक धरी हर कई रंग ने लाल बिलावल महला पंजवाई सहज समाज आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा साई संग प्राप अमृत गुण चीन रहाओ।

देश है पूलता है हम बक्स हरे रहाओ हम अब गले करे असंख नीता गुण दाता रे दासी सांस प्रभु त्याग है ये कर्म हमारा है तुम देवो सब किस दया हम अब करता रहे लाग प्रेत दास दान फिर नाच देखा सुम हमारा तो ते बार किसु नए पवत काटन हारा को ना

अंत काल पर जाओगे एकाए चलो करो दी दास रे सोई हो जस मद करमा कौना नो बंदे छूटे सके कई सरना बिलावल महला पंजमाए पिंगल पर पार परे पाला चतुर्थ कीता अंदरे तरबड़े सूझ्या गुरु भेटता पनीता महिमा साधु सां की सुनो मेरे मीता

प्रसाद भगत प्रभात नी दे लुड़सनाई साध लाउट कावरा विद्या माया विस्माद ऐसी पेकी ने दे पूरे प्रसाद राज मृगतम जो बनाई नाने बिदबाद रहाउ रूप तू सुगंता का प्रभुगा दई मिलत संगो प्रसाद तन हो दुर्गा दई फिरत फिरत मन मुख पया कह मोगन जड़े सोगा दई ओ सत्य चू कह मो प्रगा दई प्रभ कृपा ते गुरु मिले हर बिस्माद सुख से नानक आनंद के पूर्ण नाद बिलावल महला पंजमाए चरण पाई सद बोहिताए ते सागर जेताए मार गए पाई ध्यान मैं गुरदसे पीताए हर हरे हर हरे हरे हर हर हर हरे तय उठ बैठ सूदे हर हर हर चेताए रहाउ पांच चोर आगे पगै त साध संगेत पूजी साध कणु लाभ ग्रह सुभा से नै चल आसन मिटी चेत।

ईता लूड़ी से करे तुझ बिनकुशी ने गिनाए। प्रताप प्रताप तुम्हारा देखाए जो दू चढ़ जाए। तुमरी कृपा ते छूटी आए बिन से हमेवा। सुगला सम्राट प्रभु पूरे गुरुदेवा रहाओ। खोज त खोज खोज आए नामे बिन कूरा। जीवन है सुख सम्राट सासंग प्रभु मन सा पूरा। जे लाभ जैत तलक सहन जाली। जाता दे गल तुम भरपूर हम मेरे दीन दयाली। सब कुछ तुम ते मंगना गुण पागी पाए। नानक की अरदास प्रभा जीवा गुण गाए रहाओ। मिलावल महला पंजवाए। सा संत के बस राय कमल सब रसनाए। प्रभ सीती रंग रात्या ते गर्व नाए बक रसनाए। नाम कैद गोबिंद का सूची पही रसनाए। मंत्र निर्मल हुई है गुर पे जब जब नाए रहाओ। हर जाग ते ताताए मन रह रस लय हसना। बदबर घास परगट पई उल्ट कमल बलसनाए। शीतल ईशा संतोख होए साबू जी दिनाए। जय दस धात मिट गए निर्मल खान बसना। राखन हारे राख्या भरमे भरम बसनाए। नरदान नानके सुखी पेख साध दसनाए। बिलाल लोई महला पंजमाए। पानी पक्का पी सह दास के तब हुए नियाल। राम राज मिल सुखदारिया अग्नि में जाल। संत जना का छोरा।

विचारो टूटा है जन के सेवा सो कराए ऐतो ते छूटा ऐत कैसे तुम ही होया आपत बनाई दर्शन भेट साधका नानक नाय दर्शन भेट साधका नानक गुण गाई बलावल महला पंजवाए सुनो सुनो हर हरे हरे हरे ठाकरे जस गाओ चरण संत करे सी।

नीते नीच अंत नीच होए कारो बिन हो बलाब हो पार मलोभा आप त्याग से सीध संग समाव सा सा नरिश रहे अंकत ही नताव सवल दर्शन कर पिटे मन बहु मिटाव संत दुख दया तरम शीतला बिलाव सबद सुहागण नानका अपने पाव बिलाव लोई महला पंजवाय अटल बिन साधु जना सब मैं प्रगटाया ये जनरल होया सा संग भेटे अलराया ये प्रति गोविंद की जा हर सुख पाया ये अनक बाता सब कर रहे गुरु कर लय पाया रहाऊ सरन परे की राखता है नहीं सह जा साया कल्पू भर नाम बोए ओसर दुलवाया अंत जन

0: सुई मिली दीन ही न जैसे का बिसराना
1: आप गने बेगाना दुख तदे जद विसर सुख प्रभु चित आए संतन है आनंद ए नित हर गुण गाई रहा ऊंचे ते नीचा करे नीच खिन में थाप कीमत कही न जाइए ठाकुर प्रताप पेखत लीला रंग रूप चलना दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया करन कारण समर्थ प्रभ तेरी शरणाई हार दिन सरै नानक जपै सत बल जाई बिलावल महला पंजवा जाल ढोवो ए शीस कर कर पग बिखलाबो बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवाबो करो मनोरथ मन माहे अपने प्रभ ते पावो देह सोहनी साधके बीजन टो लावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मन पे लावो उवा रस मैं शांत तृप्त हो बिख जलन बुझावो जब भगत करा संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन धुर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर सरन संभावो बिलावल महला पंजवा ए सागर सोई तरह जो हर गुण गाए सा संगत कै संग वसा बड़ भागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवकी राखी रहाउ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचया गुर भय सहाय जन्म मरण दुख काटिया सोका थन पाया काटी सुख प्रमोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रक हाथ सर्ब सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्मता की नजर निहाल गुर पूरा कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पया प्रभ त्यावन जोग रहा औखद हर का नाम है जित रोग न व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख न जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिवलाई साध संग मन तन हित किल विख उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ता की दूर बलाई महामंत्र नानक कथा हर के गुण गाई बिलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिन सह प्रमपात गुरु पूरा जिस पिटिया तां कै सुख प्रवेश मन की मत त्यागिया सुनिया उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दा थार मन ते कबूना बीसर सो पुरख अपार चरण कमल सो रंग लगा अचरज गुरदेव जा कहो कृपा करो प्रभ तां को लावो सेव निध निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक बुना विसरा प्रभ परमानंद बिलावल महला पंजवा त्रिष्ण बुझी ममता गई नाठे पे परमा थित पाई आनंद पया क्योर कीने धर्मा गुर पूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल पया पाया सुख बीर रहाउ सोबत हर जप जागिया पेख्या विस्माद पी अमृत तृप्तस्या ताका अचरज।